0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखने से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
1: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।

0: टीकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 आषाढ़ 3 4 5 6।

0: वृद्धा हराएको सूचना। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर एक नयाँ टीकापुरका 92 वर्षीय नवराज गिरी दाह्री पालेका, कपाल छोटो, पहेलो जकेट र लुङ्गी लगाएको, हातमा लट्ठी र कमण्डलु बोकेका, काँधमा झोला भिरेर यही जेठ 21 गतेका दिन बिहान 7:30 बजेतिर घरबाट बजार जान्छु भनी अटोरिक्सा चढेर निस्किनु भएको र टीकापुर शिव मन्दिर पुगी फर्किने क्रममा हराएकाले देख्नुहुने महानुभावले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा छोरा शिवराज गिरीको फोन नम्बर 9820-39-86-19 खबर गर्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
1: टीकापुर नगरपालिकाको निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड बारे अत्यन्त जरूरी सूचना। टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको स्थान, मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। तपसिलका ओडाहरूमा सञ्चालन हुने सेवाहरू: वडा नम्बर 6 असार 1 गते नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर 7 असार 2 गते सत्य सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 9 असार 3 गते झुङ्गा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 5 असार 4 गते मणिकापुर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 4 असार 5 गते अश्निरी सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1 असार 6 गते एकतानगर कार्य समितिको भवन, वडा नम्बर 2 असार 7 गते विजयनगर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1 असार 8 गते गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वडा नम्बर 3 असार 9 गते रामपुर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर 1 असार 10 गते ज्योति नगर सहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र। सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि। टीकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
2: स्वागत गानपछि अब सुनौ आज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमको रूपरेखा। अहिले 7:30 हाम्रो वन, 9 बजे थारूवासम्म समाचार, 12 बजे मध्याह खबर, 3 बजे कार्यक्रम देउडा चौतारी, 5 बजे थारूवासम्म समाचार, 6 बजे खोज खबर, 7:30 साझा खबर, 9:55 बजे खबर संक्षेपसँगै 10 बजे हाम्रो आजको प्रसारण पूरा हुनेछ। हवस् त, आज र आजको दिन यति नै। भोलि बिहान आज चाहिँ विभिन्न प्रस्तुति लिएर आउनेछौ। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्दै गर्नुहोला। प्राविधिक मित्र आकाश चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै म पनि विदा हुन्छु। नमस्कार, तपाईँको आजको दिन शुभ होस्।
3: तहारा राजा जी का दिलुआ टूट जाए,
4: बल्ल घरक भिटा निखौराइदा
5: मुस्कान रिछाई घरक भिटा हामी निके निउराइछौ कि का खेतोमा सखलाङका लागि मिनी लै जाइ पर्ना रह
4: आब ओराइदा डान्ती बादा
5: ले ले वही मिनी बनाकर धैलिया तू लैदा दिएस न
4: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो, यहाँ भित्तामा त ढिला पो भा माथिले सबड्डी पर्यो टिका हाँ सबड्डी अय्या दाई सप काटारल
5: दाई खै खै कहाँ काटन छै
4: यहाँ दाई यी दाई नाजमा काटारल
5: अरे ल्याउ हाली क्यु बाटो म चाहिँ मुस्कानबाट सप काटारलस ल्याउ हाली
6: काबिल काकी काबिल
5: हेर न राकेश मुस्कान न सपुआ कटलस कल
6: ना क्या काकी तो मुस्कान निया क्या का स्थान थक बैठो ना बेन काकी मुस्कान न श्वास का न सुटाई हलचल नी का राखना
5: बैठा भैया मुस्कान छाई श्वास का सुटो ता
4: बैठा
6: ओ काकी मुस्कान भलक लुगा गर गहना निकब जैना मेकअप फाफर बना दी ता ओ हाथक चुड़िया की निकाल दी ता वाकर कटला छाट भर नहीं चला छना
5: बैठा भैया सबो कटला ठाव आंजर पांजर चीर का इंजेक्शन ने तान का अथवा मुंह ले सूस का बीस पोर निकले ना हो कि
6: नहीं नहीं काकी सबो कटला घाव आंजर पांजर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
5: उसी नो कल से धर मेरा लान खा वही निटार खा वाकर सबो कटला ठाव और लगा दी उठा ना नानू
6: उफे नहीं हुई काकी घरेलु उपचार जस्ता कि झरबैरा जंगली खरबुटी ओ जडी बुटी फे प्रयोग गराउने भई बुझली
5: बुझ्नु नानु बुझ्नु
6: पेन काकी रामेश्वर मोटरसाइकल लेखाएका हित झट्ट से झट्ट साधन खोजक एन्टीभेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा लैजाई सेकजाई कलसे मुस्कान हुन झट्ट सुमर बनाई सेकजाई दादाई का अपना बेन ओटरा बेलासम हमार गांव से कौन एंटी भेनम केन्द्र लगा पर थकाई का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम्हें डाटा हम कह कर हेरा पड़ा हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुलत हमार गांव से तो निस्सहायक स्वास्थ्य संस्था में सर्पदन से उपचार कई जिना रही था हो वहाँ लाइ जाए पड़ा मुस्कान हना
5: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई
6: ले ले ले काकी मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में वही था लारी का झट्टा से झट्टा सर्पदन से उपचार केंद्र में पुगाई सीख जाए कला से मुस्कान हना बताई सीख जाए
5: बैठा बैठा याद करी सपवा डस्ल से मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बलाई सर्पदंश उपचार केन्द्र में जाकर जान बचाई वहां कौनो सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पता लगाकर फोन में से सुझाव ली
7: मोटरसाइकिल स्थापन से फिर सावधान रह पड़ा मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कभू काल मोल के का समझन साफ फिर काट से संभव हुई सम कटुया सबको फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकल से हुक्र सबको विषाहर अलग निरलग पहचान कह सही उपचार कर सहयोग उठा
5: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सब डसलक मन यहाँ बताई सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था सब डसलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केन्द्र में ले जा डाली यहीले ऊ मन एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पर्ना वो सही जानकारी लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैथा पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए देखा
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
9: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं।
10: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
11: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
10: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
11: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
12: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmctikapur@gmail.com।
13: ए रुक रुक रुक
14: के भयो किन कराएको यस्तो
13: दाई यस्तो पनि हुन्छ र
14: 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
15: डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
14: हो र हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
16: अझै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
17: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: 11 प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पतालमा। उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू,
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा, जोर्नीको दूरबीनबाट शल्यक्रिया,
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, ल्याप्रोस्कोपी दूरबीनको माध्यमबाट पाठेघरको शल्यक्रिया सेवा,
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, जनरल सर्जनद्वारा विभिन्न किसिमका शल्यक्रिया सेवा, ल्याप्रोस्कोपी दूरबीनको माध्यमबाट पेटको शल्यक्रिया सेवा,
0: जनरल फिजिसियन विशेषज्ञ सेवा,
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा,
0: रोग सेवा,
1: मृगौलाका बिरामीका लागि डायलिसिस सेवा,
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा,
2: हरेक महिनाको दोस्रो, तेस्रो र चौथो शनिबार,
0: र सिटी स्क्यान सेवा,
1: गम्भीर बिरामीका लागि भेन्टिलेटर सहितको आईसीयू, एचडीयू, सीईओएनसी र बालबालिकाका लागि एसएनसीयू सेवा,
0: रोग पहिचानका लागि प्रयोगशाला सेवा, बायोकेमिस्ट्री, इम्युनोलोजी, हिस्टोप्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, पारासिटोलोजी, सेरोलोजी, इन्डोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, डिजिटल भिडियो एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, डिजिटल एक्सरे सेवा, ईसीजी, फिजियोथेरापी सेवा, अस्पतालका अन्य सेवाहरू, स्वास्थ्य बीमा सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा,
1: फार्मासिस्टद्वारा फार्मेसी सेवा 24 घण्टा,
0: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, सब वाहन सेवा,
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा, मेडिको लिगल सेवा,
0: सब परीक्षण सेवा, सर्पदंशको उपचार,
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा इकाई,
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा, एआरटी सेवा, टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा,
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488, सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-38, उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरीको फोन नम्बर 98-57-85-63-22 खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पतालको क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।
3: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? 500 सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल?
4: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहो र घुम जाए तो था पाए।
5: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।

0: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: बुका पिएर इठ कबू पेन्सिल इठ कबू झलै फटाका आज इठ का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर आई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ हो टीकापुर मरलक रख गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल हेरा थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अपनी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रत गैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोफ राइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाइस वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: बैंक ले कभैले कसै अवस्था मिले तमरो एटीएम मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ को गोप्य विवरण माग्दैन यदि कसैले कसै माध्यम बठियाले तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या उहिले तुमलाई ठग्दो खोज्जाछ सँगै बैंकको कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित हरु उनरो विवरण मागिभर बैंकमी सोधौं सतर्क गरौं ठगि बठिए बचौं
5: सिद्धार्थ बैंक पठियै जनहितमी जारी सन्देश
6: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सदैव भरिलाई।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके बिहान के 9 बजे खोज खबर मन अपनोकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हाम्रो पात्रो व नेपाली पात्रो में फिर सुन्ती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा आज देउरा तथा वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुइटी। धनगढ़ी ओ टीकापुर से लागू औसत सहित 2 जना पक्राउ। टीकापुर में 5 दिने थारू सांस्कृतिक मेला महोत्सव हुई। ती थारू समुदाय के भाषा संस्कृति परम्परा कला साहित्य लोक नृत्य बारे जानकारी दे दिन। ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के आर्थिक वर्ष 2083-84 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमत लेकर पारित। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा आज बिहान 10 बजे थेसे देउरा तथा वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुइटीबा। समुदायमा लोप हुइटिरलक लोक कला हन संरक्षण कना उद्देश्य लेके कार्यक्रम के आयोजना करगिलक आयोजक जनैलबा। कार्यक्रम में सख्या नाच, हुड़के नाच, पंचे बाजा लगायत के प्रस्तुति रहना बा। कैलाली के धनगढ़ी और टीकापुर से लागू औषध सहित 2 जना पकड़ाउ परलबाट। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 300 अवैध लागू औषध ब्राउन सुगर 200 मिलीग्राम सहित सोही उपमहानगरपालिका 1 बैठना 24 वर्षीय पवन गुप्ता बिहान का प्रहरी पकड़ाउ करलखो। अस्थायी प्रहरी पोस्ट विशाल नगर से खटगिलक प्रहरी गुप्ताहा उप पदार्थ सहित पकड़ाउ करगिलक जनागिल्बा। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 खखरौला से अवैध लागू औषध खैरो हिरोइन 1 ग्राम 70 मिलीग्राम सहित सोही नगरपालिका ब्लक नम्बर 23 बैठना 18 वर्षीय किशोर हन प्रहरी पकड़ाउ करलक जनागिल्बा। इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर व प्रहरी चौकी कालाकुण्ड कैलाली से संयुक्त रूप में खटगिलक प्रहरी चेकजांच करबेर उ पदार्थ फेला पार्कन पकड़ाउ करगिलक हो। असार के पहिल साटा टीकापुर में थारू सांस्कृतिक मेला महोत्सव शुरू हुइना हुइल्बा। थारू टेलीविजन के आयोजना में हुइना महोत्सव असार 3 गते थेसे 7 गते सम्म संचालन हुइना बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के सहयोग में टीकापुर के सिटी हल में हुइना थारू सांस्कृतिक मेला महोत्सव बारे काल टीकापुर में पत्रकार सम्मेलन कर जानकारी देगिलक हो। महोत्सव में थारू समुदाय के कला संस्कृति परम्परा कला साहित्य लोक नृत्य लोक संगीत मौलिक खानपान तथा सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण संवर्धन और प्रचार प्रसार करना उद्देश्य लेकर थारू मेला महोत्सव कर लागिलक। थारू टेलीविजन के अध्यक्ष पोखम चौधरी जानकारी करैलबाट ई महोत्सव से थारू समुदाय के सांस्कृतिक पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में स्थापित कर महत्वपूर्ण भूमिका खेलना के संग सांस्कृतिक पर्यटन के विकास स्थानीय उत्पादन के बजारीकरण उद्यमशीलता के प्रवर्धन तथा स्थानीय अर्थतंत्र समेत टेवा पुग्न।

0: अपेक्षा करगिल बा महोत्सव में थारू समुदाय के परम्परागत नृत्य सख्या नाच मघौटा नाच लाठी नाच लगायत के सांस्कृतिक प्रस्तुति रहना के संग थारू परिकार के प्रदर्शनी हस्तकला प्रदर्शनी पर्यटन प्रवर्धन प्रदर्शनी कृषि उत्पादन प्रदर्शनी स्थानीय उद्यमी हुकन के स्टल तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम समावेश कर दिना जानकारी करागिल बा। पांच दिनसम्म संचालन हुने महोत्सव में प्रत्येक दिन फरक फरक किसिम के प्रदर्शनी तथा कार्यक्रम संचालन कर जैना बा। कार्यक्रम हन प्रभावकारी रूप में संचालन करकलाक गांव में बर्गर भ्रमण शाह हुकन सेफे समन्वय करलक आयोजक जनैल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई धनगढ़ी के सहयोग ओ थारू टेलीविजन प्रणाली धनगढ़ी के आयोजना में ऊ महोत्सव शुरू हुई लगलग हो। डाका चोरी मुद्दा में छ वर्ष कैद सजाई टोगिल कैलाली धनगरी के एकजना पकड़ाउ परल जिला अदालत कैलाली के फैसला से डाका चोरी मुद्दा में छ वर्ष कैद सजाई ओ 33,750 जरिवाना तोगिल धनगरी उपमहानगरपालिका 18 बैठना 32 वर्षीय रमेश खटका पकड़ाउ परलखुट खटकाहा जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली से खटगिल प्रहरी शुक्रवार वहां के घर से घर ठेगान से पकड़ाउ कर गिलक हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष 2083-84 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सभा के बहुमत लेकर पारित करलबा। शनिवार बैठक प्रदेश सभा बैठक से सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2080 के नियम 38 के उपनियम 4 बमोजिम नीति कार्यक्रम सभा से बहुमत लेकर पारित करगिलक हो। नीति कार्यक्रम पारित करना से आज सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह सभा संबोधन करलरह। तेसरो चो बजेट लान लगलग प्रदेश सभा के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह सभा संबोधन के क्रम में सक्कू प्रदेश सदस्य सरकार हन विश्वासिलो बनाई सक्कू ज सहयोग करलक मन धन्यवाद दिलबट। नेपालमा लागू औषध दुर्व्यसन भयावह रूपमा सामाजिक रूपमा सामाजिक समस्या के रूपमा विस्तार हुइती गैलक देखगिलबा। किशोर युवा पुस्ताई याकर्षकुनसे भारी शिकार बन्ती गैलक बन्ती जाइबेर परिवार विखण्डन अपराध वृद्धि व सामाजिक असुरक्षा बढ़ लागल बा। एक उहर कुलटमन फसना युवा के संख्या बढ़ती बा कलसे और उहर प्रहरी नियंत्रण अभियान तीव्र बनैल बा। पाछक चार दिन मन कलहक देशभर से 76 जना लागू औषध कारोबारी और भरिया पकड़ाउ परल बाट कुछ वर्ष आगथे से शहर केन्द्रित ढुला करलक सेवन ओसार पसार ओ कारोबार धीरे से गांव में समेत फैल लागिलक देखिल बा। इसे दुर्गम जिला के परिवार के पीड़ा भाग परिवार पीड़ा भोक्ति रहल बाट। काठमाण्डू के एक जहन के दाई के अनुसार 20 वर्षीय छावा विगत 5 वर्ष से लागू औषध कुलट मन फसल बाट सुधार केन्द्र उपचार ओ पारिवारिक प्रयास के बावजूद अवस्था सुधार फिनी से गिल हो। दुर्व्यसन बढ़ती जाइबेर चोरी झै झगड़ा आपराधिक गतिविधि में संलग्न हुई लागल बाट। वस्तकर और डांगके महिला फे किशोर अवस्था में कुलट में फसलक छावा के कारण परिवार सामाजिक अपमान आर्थिक भार ओ मानसिक तनाव झाल पर्लक बटुलेबाट। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछै निमिबाटी सामुदायिक सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर नगरपालिकाको निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड बारे अत्यन्त जरूरी सूचना। टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। तपसिलका ओडाहरूमा सञ्चालन हुने सेवाहरू वडा नम्बर 6 असार 1 गते नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर 7 असार 2 गते शक्ति सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 9 असार 3 गते झुङ्गा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 5 असार 4 गते मणिकापुर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 4 असार 5 गते अस्नेरी सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1 असार 6 गते एकता नगर कार्य समितिको भवन, वडा नम्बर 2 असार 7 गते विजयनगर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1 असार 8 गते गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वडा नम्बर 3 असार 9 गते रामपुर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर 1 असार 10 गते ज्योतिनगर सहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र। सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
2: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
3: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैराली, सञ्चालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
0: सूचना

खोज खबरमा फेरफे स्वागत बा। कैलालीके टीकापुर बर्दियाके दौलतपुर जोना कर्णाली लद्यामना झुलुङ्गे पुल निर्माणके काम अन्तिम चरणमा पुगल बा। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 दौलतपुरके कर्णाली लद्यामना निर्माण हुइतिरलक झुलुङ्गे पुलके काम अन्तिम चरणमा पुग्लक हो। 10 महिना आगतेसे निर्माण शुरू करगिलक थानी निर्माण सेवा काठमाण्डुके साइट इन्चार्ज विक्रम बस्नेतके अनुसार पुल निर्माणके काम अन्तिम चरणमा पुग्लक बटुलबाट। बस्नेतके अनुसार असारके पहिल साता नै पुल हस्तान्तरण गर्न जनैलबाट 15,73,00,000 लागतमा बनलक पुलके लम्बाई 482 मिटर, चौडाई 160 सेन्टिमिटर रहलबा। पुल निर्माण सम्पन्न होस्याकल्पा छ। स्थानीय बासिन्दाके आवत जावत सहज हुइना हुइल्बा कलसे टीकापुर राजापुर क्षेत्र मन व्यापक व्यापारिक गतिविधिमा फेरि वृद्धि हुइना स्थानीय हुक्र बटुइलाबाट। सार्वजनिक लेखा समिति 7,55,17,22,00,000 बिरुजिर्ण फास्ट ट्र्याक से न्यूनीकरण गर्न उहर गृह कार्यकर अलगलग जनैलबा। भारी रकम फर्छेत निहुबेल सरकारी निकायकी कार्यक्षमतामा प्रश्न उट्टिरलक उहर सेफे नीतिगत सहजीकरण गर लागिलक समितिके काहैबा। समितिके सभापति भरत बहादुर खड्का वर्षै दिन थेसे सार्वजनिक निकायसे बेरुजीके रकम बढ़बेर सरकारी निकायके प्रति कार्यक्षमता व कार्यशैली उहर प्रश्न उठलक फे योजनाबद्ध आक्रमक शैली मन बेरुजी फर्चेट कना गृह कार्यमा जुटलक बटुइलबाट। सद्दभर बेरुजी कैक कलक निहित आ बेरुजी हाँ सद्दक लागि अन्त्य कना प्रयास कैका आग बढ़ना जरूरी रहलक उहाँ बटुइलबाट। पाछक चरण मन समिति सरकारी निकाय से बेरुजी के अवस्था व कारण के विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्क नीतिगत रूपमा सुधार देखजिना कैक काम कर लगलक उहाँ के कहाइबा। कैलालीके ढिउर बनोक क्षेत्रमा करगिलक अतिक्रमण हटैना अभियान अन्तर्गत 47 ठो कच्ची तथा पक्की संरचना भत्काइगिल्बा। करिब 35 हेक्टर बनवा क्षेत्रमा बनागिलक संरचना भत्काइगिलक डिभिजन वन कार्यालय कैलालीके वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत राम विचारी ठाकुरी जानकारी दिएबाट। उहाँके अनुसार डिभिजन वन कार्यालय कैलालीके वरिष्ठ वन अधिकृत जीओच यादव के नेतृत्वमा खड्किलक टोली जिल्लाके गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत भीमदत्त राजमार्ग आसपास वन अतिक्रमण गर्क बनागिलक घर तहरा ओ अन्य संरचना भत्काइगिलक हो। खोज खबरमा फेरफे विश्राम पाछ ऐनेनी बाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3, 4, 5, 6 और 7 गति।

0: वर्षेनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा, असमानता, बिग्रदो स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने, गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000 देखि 75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान,
1: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
3: मै नै जाइ, उहाँ आफ्न अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइको। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तू मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9846-77417।
6: खोज खबर में फिर स्वागत बा। सरकार संचालन कर गिलक राष्ट्रीय पोषण लेखाजोखा अभियान के क्रम में करीब 18,000 बाल बालिका शीघ्र कड़ा कोफिशन से ग्रसित हुईलक देखा गिलबा। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय बाल बालिका के पोषण के अवस्था पत्ता अभियान संचालन करलबा। ऊ अभियान के तथ्यांक सार्वजनिक करबेर 18,309 बाल बालिका मन कड़ा शीघ्र कुपोषण देगिलक स्वास्थ्य सेवा विभाग के पोषण शाखा प्रमुख लीला विक्रम थापा जानकारी देलबाट। वहां के अनुसार अभियान के क्रम 10,35,201 बाल बालिका मन परीक्षण करगिलक मन 18,309 जन बाल बालिका शीघ्र कड़ा कुपोषण से ग्रसित हुईलक देख गिलक हुई। जांच करबेर 88,205 बालिका मन बाल बालिका मन शीघ्र कुपोषण रहलक पागिलक पोषण तथा प्रमुख पोषण शाखा प्रमुख थापा बटुलाबाट। सरकार गैलक वैशाख 15 थेसे जेठ के 15 गते सम्म 6 महीना थेसे 59 महीनासम्म के बाल बालिका के पोषण अवस्था जाँच गर, शीघ्र कुपोषण के समय मन पहिचान उपचार गर, अभियान संचालन गर्ल उहाँ बटुलाबाट। आइतबार अवैध रूपमा भारत लैजेती करलक दुईठो भैंस ओ एक परूहन नियन्त्रणमा लेक भन्सार कार्यालय गुलहरिया जेना क्रममा दुर्घटना हुइलबा। तीव्र गतिमा नेपालगंजसे गुलहरिया उहर ऐटिरलक बा प्र 03001X1412 नम्बर के ट्रक ठक्करसे ड्यूटीमा खटगिलक सशस्त्र प्रहरी के एक सहायक प्रहरी हवलदार के ज्यान गिल्बा कलसे एकजना खाइटे हुइलबाट। यह समाचार के संग खोज खबर ओरायल जेती जेती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मन आज देउरा तथा बिरहट सांस्कृतिक कार्यक्रम हुईटी। धनगढ़ी व टीकापुर से लागू औसत सहित दुईजना पकड़ाउ। टीकापुर में 5 दिने थारू सांस्कृतिक मेला महोत्सव हुईटी। थारू समुदाय के भाषा, संस्कृति, परम्परा, कला, साहित्य, लोक नृत्य बारे जानकारी देजिना। वो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के आर्थिक वर्ष 2083-84 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले का पारित। लिता आबक खोज खबर से मई गीता चौधरी बिदाउटु और समाचार 12 बजे के खबर संक्षेप सुनसेक भी तबसम्म के लागि अपनो अग्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनतिर भी राम राम।

0: बिजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
1: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
2: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
1: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी, स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
2: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
1: हिंसा अपने थेनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।

0: उहट हेर बुढ़िया बरखक समय थेबा पखारिक मुहका रुकल बाकी मुसवा आयल कलस आब मुसवा खुशी सपोर्ट आई सकता
1: ओहो मोनिका ठाक समझनो सरक आंदर पादर झफास थे बाहर से कच्चा का तहिल बा काट पर ना रह
0: असी करी हेर बुढ़िया वो सिन्हो कलस से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका कर बासी खाई दूसरा सर परिवार मन मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर दी तो नहीं हुई
1: हुई था वो गुरुआ असिन डाला मत ध्यान ध्यान पोहर झफास भी था मा साथ नुख बैठल रह सकते ना
0: वो और से तक तलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू वो मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुकर से सांप मुस्कुचू के पैठनी सेकना मेरकर चबरदार पड़ल दूसरा घर आंजर पांजर फसफारो सफा फूल से साफ पहना का उत्साह कम हो जाए
1: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
2: सात बरखा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था इ मौसम में आपन बसियारा में पानी पैसना पीला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग आई सक
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: सूचना सूचना

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
1: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू
2: नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो,
1: हट ब्याग, थर्मस, जर्किङ, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ब्याग, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैराली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
4: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकल छु।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तू मैं अब भी जाए।
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाढ़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस पाटिन गतिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई चीज जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक था।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-2373।
3: आज तिमी मेरो वरीपरी किन घुम्दैछ छोरी
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
4: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि
3: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
4: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
5: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स मा नया नया डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुमका छड्के तिलहरी बाला चूरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसन का गरगनारो पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98-688-14-799 98-24-60-25-32 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98-24-67-28-25

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतवास परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3, 4, 5, 6 और 7 गति।

0: इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नई हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
4: दलित के हो?
5: कसैको घरमा जन्मेर ब्राह्मण हुँदैन, कसैको घरमा जन्मेर शूद्र हुँदैन।
4: के दलित मानव होइन र के प्रयास हुँदैछन् विभेद न्यूनीकरण गर्न?
6: सुदूरपश्चिमका आम दलित समुदायहरूको पहिचानको कुरालाई मैले खोजी गर्दैछु।
4: गाउँदेखि शहरसम्म, स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म, हरेक तह र तबकासम्म पुग्छौ हामी। आवाज विहीनहरूको आवाज बन्छौ हामी। विभेदका विरुद्ध हाम्रो सानो प्रयास कार्यक्रम समानताका स्वरहरू तपाईँकै घर छेउको रेडियोमा सुन्न नभुल्नुहोला। साताको सोमबार राति 8:05 बजे।

0: ई लड़का के कब्बू कापी रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज काना हो बाबा फिर उस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बर बरती रहा
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल हेरे थी ना झोला फाटल हुई थी कहे आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुही
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: जान छै उडन चरी दिन रात भौतारी आई गयो रेडियो खोल देउडा चौतारी आई गयो रेडियो खोल देउडा चौतारी
4: झल्को आउँदो बाह्रै मास दिन काटु म क्यारी बाटो हेरी बस्याकी छ घर मेरी प्यारी
3: एकडाली बाजगुर आउँछको एकडाली साजको यति सौराई क्या लाग्दो छ परदेशी बाजको यति सौराई क्या लाग्दो छ परदेशी बाजको।

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया ना करा रेडू बिगरी
3: नहीं का मम्मी टी कपूर FM से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आयता वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल से सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूले भी।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन उनका घर हेरो ना अटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफी ओस्ट बनी हो ना वट्र फिर पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए तो था पाए
2: यूपी भीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई लग मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
1: असार 6 गते पहिलो शनिबार
0: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रायसिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
2: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
1: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
0: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 98688008 र 98253772772।
3: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो।
4: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
3: पढाइ हुने विषयहरू
5: अनिवार्य नेपाली,
3: अनिवार्य अंग्रेजी,
5: सामाजिक गणित,
3: ऐच्छिक लेखाशास्त्र,
5: ऐच्छिक वित्त शास्त्र,
3: ऐच्छिक अर्थशास्त्र,
5: कम्प्युटर विज्ञान,
3: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,
5: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि,
3: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि,
5: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि,
3: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
4: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
6: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधबार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
7: जब देखनो तो हिन है।
6: यदि मन परत कल से अपन मनन सुनेना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 091-561-255 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: सामाजिक सञ्जालमा गाली, धम्की, फोटो भिडियो दुरूपयोग, नक्कली आईडी बनाएर हैरानी, यी सबै महिला हिंसा हुन्।
1: अनलाइन हिंसा पनि कानून अनुसार अपराध हो। यस्तो भएमा स्क्रिनसट राखौं, प्रमाण सुरक्षित गरौं,
0: आफ्नो पासवर्ड अरूलाई शेयर नगरौं। भावनामा बगेर अरू कसैलाई आफ्नो भिडियो बनाउने वा फोटोहरू शेयर गर्ने अनुमति नदिऊ। यस्तो भएको पाइएमा प्रहरी वा साइबर ब्युरोमा उजुरी गरौं।
2: सम्मानित व्यवहार गरौं। हिंसा मुक्त डिजिटल समाज बनाऊ।
1: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
3: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सकी, जबसम हाम्रे सक्कु भ्रष्टाचार विरोधी नै हुइबी, भ्रष्टाचार करुया मनै नखुल्के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग, सक्कु जाने सहयोग करी।
4: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।
5: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।

0: पिलर काफे कब्बू का पिए रही था कब्बू पेंसिल ले रही था कब्बू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा के उस्ता पाटिन गतिलो ठाउं से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था कब्बू पेंसिल हेरा कई था कब्बू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगला दीदी कटास गुर झोला आनला बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कब्बू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटास बाटिन ये बुरहक ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रह स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालले छिटो नलाग्यो
4: मैले चाइनाको माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेछ के भएको छ तलाई
3: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसकेँ छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लाग्या लाग्या हुन्छ खानै सक्दैन
4: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमा मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
5: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
6: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ढकरोला रोड टिकापुर कैलाली

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थो
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब ही जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
4: युनाइटेड एकेडमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकाय मा भर्ना खुल्यो
5: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
4: पढाइ हुने विषय

0: रजनी वहाँ 62 नंबर लक्ष्य बा दिखाओ तो अच्छा दिखाओ तो
1: मुर्गी दाना देना जा रहा मैं कातर लक्ष्य खा देती अब ना
0: एक तो तपा का मुर्गी न खा रखे लक्ष्य से बिगड़े से वक्त की आनो हारी छट्टा
1: तापन घिसका चलाई नहीं हुई नहीं तो अमन दस सागर बेन घर भीतर आई लागी कल से भगे भी
0: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खाली कहीं का भगाए खोज रखो का
1: आरम कीड़ा फटिंगा मुझ सांप सिर निशा करके फलाम को जारी लगा बात तप्पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं देखी बेन अपना न दाठी दूर रिना
0: हो बिना तो क्या करना हो तप्पा देखती की डर नाग लगना रही था देव तप्पा तो अपन न घूम का बारी और पाल गिनता
1: हमें केवल सांपन से डरे ना नहीं होनी मुखर फिर अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई लगी पति रक्षा करक लाख वह अपन बचाव करक लाख सांप दस ना कर था
2: सांपन से दूर रही सांपन रीस नहीं लगाई वह नहीं जिसके सांप मने देख कर डरे था नी चलाख दूर रहे साप नी दस्त तर हुक्र खैना खुवाज बाहिर निस्कन म घाँस काटा बेर छाल बेर ड्याङ्ग बेर छुबेको छ मनै मही मारकलाकबाट कना समझ पट्टी र छाकना क्रममा साप दस लाख अर्थ मनै सापन व्यक्ति कि मारक लाग रहेछ ओसीको करबेर फेर साप दस लाख अर्थ
3: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाएको लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेटिथा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: उयो सबै पेपर अरूको सकिया हो
6: सकियो
5: तेरो पर्सनल मोबाइल नम्बर त ब्लक अरे
6: पर्सनल मोबाइल नम्बर त उही दिनै टेलिकमको अफिस ड्राइभर ब्लक अरे आयौ
5: उयो बैंकमी
6: बैंकमी
5: हाँ
6: ता क्याई अद्दु पड्यो भ
5: त्यो त अद्दु पड्छ भ आफ्नो मोबाइल नम्बर बदल वा ब्लक भएको आफ्नो बैंकलाई नै जानकारी दिनु पर्छ र आफ्नो बैंक खाताको जानकारी औरका हातमी पुग्दो बठे सचेत बनौ
6: सतर्क रहौ ठगी बठै बचौ
7: सिद्धार्थ बैंक पठै जनहितमी जारी सन्देश
8: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
1: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।
2: के तपाईलाई थाहा छ
3: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
2: हो र
3: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
2: अनि
3: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
2: के छ त विकल्प?
3: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ।
2: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
3: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।

0: कब्बू का पी रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आदि था, का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कब्बू लड़का कभी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कब्बू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मर्म फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके संजिक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम अपने कुरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हम पात्र ओ नेपाली पात्र में फेसन टीडर बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकात्म रिवेक द प्राइम महाग्रथा उपनिष सप्ताह होइन सत्तरी टोल विकास संस्था टीकापुर एक ब्लक नम्बर 15 के प्रथम साधारण सभा प्रतिनिधि सभामा असार 1 और 2 गते मन्त्रालय गत विनियोजन शीर्षक यो पढ छलफल हुन उपराष्ट्र मन्त्री खनाल बेइजिङमा आप्रा खबर टीकापुरमा ऋग्वेद परायण महायज्ञ तथा उपनिषद सप्ताह हुलबा मल्लिका विद्यापीठ पीठ गुरूकुल टीकापुर के आयोजन में ऐना कृतिमा सप्ताह हुनमा वेदो उपनिषद के मंत्र हवन के आम नागरिक जानकारी दिना सप्ताह करना लगलग गुरूकुल के आचार्य टीकाराम आर्य बोटिलोट सप्ताह में देश के ढेरसिन भाग में से श्रद्धालु भक्तजन ऐना हुलक ओह संचालन व्यवस्थापन के लाग रतन राज तिमिल सेना के संयुक्त में 101 सदस्यीय आयोजक समिति गठन करलाट ऋग्वेद प्रायण महाज्ञ तथा उपनिषद सप्ताह विधेयत लोक कल्याण केला करना कार्यक्रम हुई कार्यक्रम सम्पन्न करना सबको सहयोग आवश्यक लक संयोजक तिमिल सेना बोटिलो महाज्ञ तथा सप्ताह संचालन केला न्यूनतम खर्च 3 लाख से ढेर बढ़ी लग्न देखगिलवा संघ का खर्च महाज्ञ संचालन होने अगवाई इच्छुक श्रद्धालु मसे संकलन करना हुईवाट महाज्ञ तथा सप्ताह आयोजना केला सफल करना आईतवार बिहान के हुलक फेला वेद उपनिषद वाचन में सीमित नई करके वहां लेखलक मंत्र हुकुन के लगाई सेकना वेत्ता हुकुन मसे मंत्रोच्चारण प्रवचन कराई पढ़ना धनजन्य तिमिल सेना सुझाव दिलवाट पीपल चौतारी टोल विकास संस्था टीकापुर एक ब्लक नम्बर 15 के प्रथम साधारण सभा हुआ संस्था के अध्यक्ष लक्ष्मी खत्री की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम में टीकापुर वड़ा नम्बर 1 के वड़ा अध्यक्ष मोहन बिक प्रमुख अतिथि रहल नई कार्यक्रम में नगरपालिका के कर्मचारी अमृता रावल टोल वड़ा संजाल के अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद रेग्मी छिमेकी टोल के अध्यक्ष सुला रावल खत्री उषा कड़ाइट शेरबहादुर विष्ट लगायत शुभकामना दिल रही साधारण सभा लक्ष्मी खत्री के अध्यक्षता में नया नेतृत्व चैनकल संस्था के उपाध्यक्ष में दीपक बोगटी सचिव में पवन रावल थापा कोषाध्यक्ष ममता आचार्य सहसचिव में चन्द्रबहादुर बोहरा चैनहीलबाट भीम बहादुर शाह के संयोजकमा 9 सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन हुईलबा कार्यक्रम में स्वागत भीम बहादुर शाह कर्लर एसएफए सचिव पवन रावल

0: समय प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
0: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
0: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्घ आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सबको रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
3: सर्लाहीके बागमती नगरपालिका नवनिर्माण चौकमा आइतबार बिहानकी भी गाड़ीके ठक्करमा एकजना महिलाकी मृत्यु हुँदा अरू एकजना गम्भीर घाइते हुनबाट बिगरके ट्युसन लाइट तन्ती रहल बागमती प्रदेश 03001 J0776 नम्बरकी भी हाइस गाड़ी ठक्कर दिलक। स्थानीय 55 वर्षीय जयकुमारी देवीकी मृत्यु हुँदा इभी गाड़ी प्रदेश 202001-1879 अटो तानके मरमत केलाक लैजेती करती डगरमर नियुक्ति रहल बेला जय कुमारी देवी हो और स्थानीय 40 वर्षीय पूनम देवी यादव ठक्कर दिल रहे। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुलक। दुई जना उपचार केलाक बीरगंज तर्फ लैजना क्रम जय कुमारी देवी पारदेशिक अस्पताल कलैया बारापुगा के चेक जाँच करना मृत घोषणा कलक इलाका प्रहरी कार्यालय भरतवा के प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी गोपी कृष्ण सुवेदी जानकारी दिलबाट। उहाँकै अनुसार दुर्घटनामा घाइते पूनम देवी के कलैया स्थित एक निजी अस्पतालमा उपचार जारी भयो। महिला ठक्कर दिना गाड़ी अटो तथा दुनू सवारी चालक नियन्त्रण मरेला डीएसपी सुवेदी बोटेलबाट। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक 2083 अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षक के ऊपर आगामी असार 1-2 गते छलफल हुन हुँदा मन्त्रालयगत छलफलकै क्रममा उठलक प्रश्न कि आगामी असार 3-4 गते सम्बन्धित मन्त्री जवाब दिन कार्यक्रम तय हुलक संघीय संसद सचिवालय जनलबाट। असार 1 गते युवा श्रम तथा रोजगार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति कृषि वन तथा पर्यावरण सूचना तथा संचार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन शिक्षा तथा खेलकुद स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महिला हो बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी विनियोजन शीर्षक ऊपर छलफल हुनबा असार 2 गते विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला पूर्वाधार विकास गृह ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई परराष्ट्र अर्थ हो रक्षा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोगकै सचिवालय उपराष्ट्रपति हो राष्ट्रपतिकै कार्यालयकी विनियोजन शीर्षक ऊपर छलफल हुन सचिवालय जनाइनुभयो। असार 3 गते युवा श्रम तथा रोजगार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति कृषि वन तथा पर्यावरण सूचना तथा संचार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन शिक्षा तथा खेलकुद स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महिला बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व सामाजिक सुरक्षा मन्त्री मन्त्रालयगत छलफलकै क्रममा उठलक प्रश्नकै जवाब दिन हुनबाट असारका असार 4 गते विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला पूर्वाधार विकास गृह ऊर्जा जल

0: तथा सिंचाई परराष्ट्र अर्थ व रक्षा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोगकै सचिवालय उपराष्ट्रपति हो राष्ट्रपतिकै कार्यालयकै विनियोजन शीर्षकै उप छलफलमा उठलक प्रश्नकै जवाब सम्बन्धित मन्त्री डिना कार्यक्रम तय हुँदा सरकारकै हे जेठ 15 गते आर्थिक वर्ष 2083-84 राजस्व व्ययकीय वार्षिक अनुगमन बजेट प्रस्तुत गर्न रही प्रतिनिधि सभामा इन्स्याका बजेटकै उप सामने छलफल सम्पन्न हो कि अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मगले जवाब देशकलबाट खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछ फेरि सुन्तिर विश्राम सामुदायिक रेडियो टिका प्रफ्युम
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल
2: अरे का करुरी बुढिया कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का
1: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुहाका द्वार लगाक तू फे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ र घूम जाए तो था पाए
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26
5: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
0: असार 6 गते पहिलो शनिबार
5: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
3: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
0: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
5: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 98-688-0008 र 98-25-63-77-72
6: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
7: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ब्याग प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 98-49-85-18-08
0: विश्राम पाछ फेरि स्वागत बा परराष्ट्र मन्त्री सीबी शिशिर खनाल चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनके 4 दिवसीय भ्रमणका लागि बेन्जिङ पुग्लबाट उहाँकी गैरकरा उहाँतर्फ प्रस्थान कल रही बेन्जिङ स्थित नेपाली दूतावासकी अनुसार उहाँ स्थानीय समयकै अनुसार आज अपरान्न उहाँ पुग्लबाट बेन्जिङ स्थित विमानस्थलमा उहाँ चीनके लागि नेपालकी कार्यवाहक राजदूत श्रीमती के रोशन खनाल तथा चीनकी विदेश मन्त्रालयकी अधिकारीक स्वागत गर्न रही परराष्ट्र मन्त्री खनालकै सम्मानमा नेपाली दूतावास सञ्जेक एक स्वागत समारोहमा आयोजना कतिबाट समारोहमा उहाँ नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया समेत गर्न हुना दूतावास जनिरहेका चीनमा रहलक परराष्ट्र मन्त्री आफ्नो समय कक्ष वाङसुङ नेपाल चीन सम्बन्ध अभिन सुदृढ बनैना तथा आपसी सहकार्य अभिन्न सबल बनैना सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ता गर्न हुनबाट संघ उहाँकी चीनकी उच्च अधिकारी संघ बेग्लै बेग्लै भेटवार्ता गर्न हुना तालिका रहलबा मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्रिना उद्देश्यके बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजना हुना लगानी सम्मेलनमा मन्त्री खनाल सहभागी हुनक संघ चिनिया उद्यमी व्यवसायी संघ फे छलफल गर्न हुना कार्यक्रममा मन्त्री खनाल आगामी असार 3 गते स्वदेश लौट्न हुना कार्यक्रममा यह समाचार संघ खोज खबर ओराल जनाइसे पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से एक चो टीकापुर में ऋग्वेद पारायण महायज्ञ तथा उपनिष सप्ताह होना पीपल्स अथॉरिटी के टोल विकास संस्था टीकापुर एक ब्लॉक नंबर 15 के प्रथम साधारण सभा प्रतिनिधि सभा में असार 1 को 2 गते मंत्रालयगत विनियोजन शीर्षक के पर छलफल होना उपराष्ट्र मंत्री खनाल बेन्जिंग लिटा बक्ला खोज खबर तह प्राविधिक मित्र छपीलाल चौधरी धन्यवाद लिटी अबक्ला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदाई टू या पास 6 बजे के खोज खबर सुना सिक्वी सामुदायिक रेडियो टीका प्रयोग सुनती रवि राम राम।

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारो सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: नहीं कम सर
1: आओ आओ तू पहले से आई ना मटा झील कर दो संजू कुछ समस्या तो नहीं हुई
0: कुछ नहीं हुई सर टॉयलेट के पंद्रह सफा रखना सर लग के घूमक रहते हैं जैसे चेयर सर लगने का हलचल नहीं करें मोर सपो का इकट्ठा पहनो तो पहला जाके
1: मोर सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
0: नहीं चलेगा सर
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा पूरा से कहो मोर सपो देवगो कल से भैया ना चलाए नहीं बिठा तब मोला से की वाकर में रहल बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआर सप्पा मुआर देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाँ साले पकड़ा नहीं भी
0: सर मुआर सप्पा देखना से क्या करना
1: सप्पा मुआर देख पड़ना से थे जाग से मुआर नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास असम थे सप्पा दस सकत वह वर्ष मुआर अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी बेंतन इतना मल अच्छी ले चला था मुआर नहीं मुआर कहीं जाना से भी था
2: मुआर सापन से सावधान रही मुआर मार गई सप्पा है ना पकड़ना व खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासी सपवा दस सिट्ठा संभव हिंसम सपो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
3: पर पदंग से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केंद्र कहाँ बाकी था पता लगे लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org में हेर सीखा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे, जय से जय।
0: हिंसा अपने फेनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
2: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज।

0: स्थानीय पञ्चे बाजा, सख्या नाच, हुर्के नाच लगायत विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीहरूको प्रस्तुति रहनेछ। जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर ओडा कार्यालय खैरीफाटा कैलाली।
1: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे घोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने न पट्टा नि पैना त
2: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आतु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाट अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान्छे कि कत्रा सुगर बना कन ल बाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए। मोबाइल नंबर 98684140208 ओ 98486239261।
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

0: टीकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान वर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3, 4, 5, 6 और 7 गते।

0: होइन दिने उहाँ बासक नम्बर लक्ष्मी भा देखाउ त कसै लेखाउ त
1: मुर्गी दाना देना जाला म काकर लक्ष्मी खाद दि अब न
0: एकको तपवा का मुर्गी न खा रहे लक्ष्मी से डुरेले से बख्ता की आनो हारी छट
1: तापन हिस्का चलाई नहीं हुई नहीं तो अमन दस सागर बेन घर भीतर आई लागी कल से भगाई दी
0: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खादी कहीं भगाई खोज रखो का
1: पारा में कीड़ा फटिन्ना मुर सांप सिर निचा करके फलाम को जारी लगा पाप्त सप्पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं खेती बेन अपना न दाठी डूर बिना
0: हो बिना क्या करना हो सप्पा देखती की डर नाग लगना रही देव सप्पा तो अपना घूमकर बारी और कल गिनता
1: हमारे चल सांपन से डरे ना नहीं होनी मुखर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई रहती पोती रक्षा करस लाख वह आपन बचाव करस लाख सांप दस ना कर था
2: सांपन से दूर रही सांपन रीस नी लगाई वह नी जीस गई सांप मने देख कर डरे था नी चला कर दूर रहना सिर सांप नी दस डर तर मुखर खेना खाजा बाहर निकल गया ना मत घास काट बेर ख्याल बेर ज्ञान बेर छू बेर से मने वही मारक लाख बाटा कना समझ कर पोती रक्षा करना क्रम सांप दस लाख कर था मने सांपन देखती की मारक लाख रहा उसी का करबे थे साफ दस न कर
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाए लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेती था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: सूचना सूचना